0: Hey, hi, Akash, Vani Aizol, FM zo oi za point pasari atanga puan chua ani vu in thlathum vu in ni thum thlasari sang ni som ni paruk zir dop ni ya kan hun vu ikhat na chu kan lo chan ta a ngai thlatu zong zong te ni thatak mang turin du sakna kan hlan che u program puang tu hi valal ngei zwali kani a control room duty engineer valal shwaya ani Winitana can tupui, tour tzu, anuam apiang tu tzuan, she om a patuayang, anuam apiang tu tzuan, she om a patuayang, di ani, di tzuan, kan hun masaber atan, hindi chunga, patian fakna la, ngay tlak na ho, ngay tlak na hun kan nei anga, tzuan, hindi chunga, patian fakna la, hi daria ta chunga, daria le min somni tling, ani ang,
1: नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को, आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम ज़ोय 100.7 दोस्तों, और आपके साथ हिंदी के खंड में यस हाजिर है आप सभी की दोस्त आरजे वियली, और मैं आरजे वियली आप सभी के साथ मैं हाजिर हूँ मसीही गीतों के साथ। और इस खंड में दोस्तों हम मसीही गीत सुनेंगे, और दोस्तों आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार भी रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि कल रात की नींद आप सभी की अच्छी गई होगी। और आज 3 तारीख है, ठीक है 3 महीना नहीं है आज 3 तारीख है दोस्तों। वो इन नी थूम मनी जो ओ थला थूम खा नी लव इन थसरी ओ तो चलिए फिलहाल इसी तरह हंसी मजाक के साथ मसीही गीत की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज की सुबह आप सभी ने अच्छे से शुरुआत की होगी, बहुत ही अच्छे वाले मुस्कुराहट के साथ। अगर अभी तक आपने मुस्कुराया नहीं है तो आप मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही खुश नसीब इंसान हैं दोस्तों कि ईश्वर हमें एक नया दिन देते हैं, एक नई सुबह देते हैं, एक नया समय देते हैं दोस्तों, फिर से एक नई जिंदगी को जीने के लिए दोस्तों। तो इस नए पल को, नई जिंदगी को, एक नए दिन को दोस्तों ईश्वर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं, गुजारते हैं दोस्तों। आइए इस खंड में हम आप सभी को सुनाने वाले हैं द विश्वासी और देवी सिंगर्स और पी ललन मोया एंड पार्टी के आवास में गाया गीत मसीही गीत। तो आइए दोस्तों इस खंड में सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी डेविड सिंगर्स के आवास में गाया झुम झुम। यस सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को देवी सिंगर्स के गाए गीत झुम झुम गीत आप सभी को झुम झुम नाचो रे, यस, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर का प्यार एक ऐसा प्यार है जो हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वो हमारे भलाई के लिए सब कुछ करते हैं दोस्तों, ठीक है? ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? इसलिए जिंदगी में जो भी हमारे पास है ना, उसी में खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है? यस। तो और यहाँ पर गीत सुनाने से पहले ओमेगा सांगते ते मेरे दोस्त जामते मिंगमोइतिया की तरफ से संदेश आया है। ओमेगा सांगते ह्यान लोंगाई थफू निमो कंगाई जो थथुम निलविंद तुंगा तुक थर दू सक ना इतान वो इन शिशेन न छाने हूं मन नाम ले रोनती अनी लौंगे मे वो चुआन मासे लथो माते हनकी ले थे ला के तिखो मई गई जो हूं ही अकल चकले लुटुका। और मेरे दोस्त जाम अहियान अर्जवीर नमस्ते सुप्रभात गुड मॉर्निंग अरोन्तिया, यस आपको भी गुड मॉर्निंग सुप्रभात जाम। ओ कल रात की नींद आप सभी आपकी कैसी गई? आपने अच्छे से सोया या नहीं? और डॉक्टर ने जो कहा था उसको फॉलो किया या नहीं? जाम डॉक्टर इन बिंग रे लौतुरी ने तीर सिखा ओ पुआन पो छुई रे लौ छुई तम लौतुरिन मो जाना थे मिंग रे लौतुरी ने तीर सिखा ओ सुशेल नते ही कन गई पोई मो शाम शाम ते आया ना चू थो तुर निया मसे कन सुशेल न गई तो अमले कहना कन थोले सी चुन एक माउम जी अम दोन लौ नि ओ चुबंग चुन तो चिया खान ना तेखा लौ थोक उलंग ओ चुन मिंग मोई ते ह्यान बाजल नमस्ते ड्यूटी नोमले कहकर उन्होंने भी मैसेज संदेश दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए। और मैं भी दुआ करती हूँ फिर एक बार कि आप सभी का समय दिन बहुत ही अच्छे से गुजरे, ठीक है? और यस, तो चलिए फिलहाल अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को पीलन उन्मो या एन पार्टी की तरफ से प्रभु मेरे। और यस सुबह के साढ़े सुबह के यस 8 बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। जो जो ऑफिस जाने वाले हैं, जो जिनका काम एक टाइमिंग के मुताबिक चलता है, उनके लिए तो उठने का समय हो चुका है। तो जल्दी जल्दी उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, तैयार हो जाइए, नहा धोइए, फ्रेश होकर अपने काम की तरफ जाइएगा, ठीक है? तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी आप सभी को प्रभु मेरे पीलन उन्मोया एन पार्टी की तरफ से आप सभी के नाम।

यस, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने जो सुना था वो था द विश्वासी की तरफ से एक मसीही गीत। और तो दोस्तों, अगले गीत की तरफ चलने से पहले चलिए आइए आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलते हैं। और संदेश आया है एलारा मामित की तरफ से, और एलारा मामित हियान आरजे वीएल से बेदियो तीन नाम ले रोंती आ ओ विलार नंग पोट से बे ओ चुआ नंग पोट नाम द विन हुन लव मंग दोन्या ओ विल नमा ते चुआन जाजिर तू रवाई खानी तान ले आई ले तू ते तान ओ रोंती अनी फिल चिन ले मई तिलोम ओम ले मई। और यहाँ पर दूसरा संदेश मेरे लिए हितेंद्र दास जी की तरफ से आया है। उन्होंने हमें गुड मॉर्निंग कहकर विश किया है। यस, तो हितेंद्र दास जी आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत सुंदर वाला सुप्रभात। हम चाहते हैं कि आपका दिन आज अच्छे से बीते। और ओ हाँते पा मैसेज अरुण थिंगा मासे डिलीट ले दया अरुण टाइप ले मे का इसलिए। तो चलिए हम उनके संदेश को उनके संदेश के लिए इंतजार करेंगे और हम गीत की तरफ चलेंगे। अब मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी सियोन देस पी ललन मोया एन पार्टी की तरफ से, आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ मसीही गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा। दोस्तों, हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं आप सभी का साथ देने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से उठे होंगे, है ना, और आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आप अपने कामों में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, है ना दोस्तों। तो आइए अगले गीत की तरफ चलने से पहले आपके संदेश की तरफ चलते हैं। गाकते पाहियान आरजेवीएल नमस्ते रोंतिया ओले नंगपो नमस्ते ओ गाकते पा तिचुआन इला प्लेले तुर्खा इला रामामित ओमेगा सांगते या मिंग मोयते या वी कोंगते या जिलल जा मामोया मुनपुई इतान कल्हाने फ्रॉम गाकते पा बिल कोथिर अरोन तीन रोन जियाक आ रोन थोना कनलोम छिनले मै तिचुआन इ थन सकते पो हियान अनलो शतुरा ngai ila लाते पो ही अनथन सक वे छिन चिन कशिया आ लो थन सक छिन अनि लो छ ओ इन लो थन सक ngai इन लो थन सक लो पलता खान लो थन सक छिनुला ngakde pa hi afel chin le maya la hi ron thlan sak den den zela o ti chuan tu sakna chikhatani mo in tu sak ton na hi alu ni tro chan sa ma hian a ओ अनि ओ कबन ओ कति पलुतुक ओ जाम कलो क ओपन खान के शिस्या अलो थिंग फुल लो नि यंग तुरो ओले तो चलिए फिलहाल मेरे दोस्त अजाम की तरफ से जो संदेश आया है उन्होंने लिखा है कि वो इंटरेस्टेड ना छतक नहीं आठवां तक ड्यूटी थे ना दू सकना कदूसक अच्छे प्लेलिस्ट ते इड्यूटी पुई तुरनेन इंतान ले जोरम रिमो एफएम जो ओय ngai la tu titan control room a duty til le duty officer tan po tin pu sama ma te nu permission veng thlang ami tan le vipin le ugp a mai la vin vle ikam che kha man mo mi a lo tu Chong sual all day, may ni han duty nu am hot le. Ni nom ma. A je bil ga message chia zo lo ma se ka lom chi ne. A chan chu bu in hian gang gang a le le em chu. Then it hen don a wang in. Ga ve lang che all za la zam. Chuan fitness boil run lang lol mai van re em ngatinge le mi thank you ta mani le o kan lo ti la yin run lang le lol mai a fitness boy a yes kaise hain aap fitness boy aajkal kya hal hai aapka to fitness boy likhte hain ki pyang to zinga e kaise super boy berboin अगर तो सही तो लवांगू मी सही साल बेटे वो इन तारीख ला थोम नि सरी सॉरी निलाओ नि थोम ला सरी संग ने सब निपर जोग मोले नि हियान इ स्वामिंग इन जे मसी हुन एंगे मोचेन करम चांथे लो नु इन करन जोंग लुत वेले के थैये nile nuam o ron ti a lom om le mai re wong wong lu tu ka nang po kan lo nge kan lo she wearing chin che sin fitness boy pa ba shukriya aapke sandesh ke liye or as a silo hian levan tu tu kin chu a thu ka ba dang ve chuan लल दिन पुया फल कौन का संदेश आया है चौन एलारा मामित की तरफ से भी संदेश आया है कंसर जो लो लोगे पु एलारा हैना जे विल नेक्स्ट इतान ले घाकते पा जेलल जामा मोया मुन पुई तेतान ओ रोन ती बोका ओ ले इन फेल छिन ले मै ती चौन लल दिन पुया फल कौन हियान आर जे इप्ले ले तुर खा नंग मा तान ले लोंगा थावे जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले kachiante veng shang shangami te tan le par pari pu tan kung te tan meng moya tan
kevala tui kwala mi titan la din pa falcon veng lai di ineron tonani la din bu ya hian felchin le mai ole bahut bahut shukriya aap sabhi ke pyar bhare sandesh ke liye pa enga message ki kan chyar le lu kange rg a ngai lo duty ring ani mo chuan mi tui hi ring tu in van ram thlir nan a man telescope ani ani vuina iti tur te tluang taka zo fel the tur che in du sakna kalan photang che aron ti boka lomom chin le mai tu chuan ke ge te hian kanau bu kan bom bu kan bom mek lo bom vero aron tia e khai lo bom ro tui teu khan lo bom ru o तो चलिए फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है. आप सभी को एक गीत के साथ अलविदा कहने का समय आ चुका है. मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी द विश्वासी के आवाज में गाया गीत. मेरे गुनाह की से मैं आप सभी से विदा लूंगी और मैं वापस आऊंगी दोस्तों दोबारा अपने हिंदी के खंड को लेकर 10 बजे. ठीक है दार सोमा हम 10 बजे हाजिर होंगे और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए बहुत ही बिजी होंगे. आप तैयार हो रहे होंगे और यस आप जो भी करेंगे आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छे से करते रहिएगा. ठीक है और हम भी चलते हैं अपने आखिरी खंड को लेकर और अगले खंड पे आपके साथ आरजे साइलोफिल्टे हाजिर होगी मिजो के खंड पे दोस्तों मिजो गीत के खंड पे. तो चलिए आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी. तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और आरजे वेली की तरफ से. तो

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आरजे वीली की तरफ से यस गुड मॉर्निंग सुप्रभात फिर एक बार, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पे। और यस मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए हिंदी के कुछ बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ दोस्तों। और सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी अपने अपने कामों के लिए निकल चुके होंगे, और शायद आप पहुंच भी चुके होंगे या फिर अभी तक किसी काम के लिए कहीं जा रहे होंगे, सफर के लिए जा रहे होंगे, गाड़ी पर होंगे, शायद पैदल से भी जा रहे होंगे, और घर पर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और साथ साथ मुझे भी सुन रहे होंगे। यस एफएम 100.7 पर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों दोबारा। और चलिए मुझे आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार रहेगा, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। नीति मोहन की आवाज में गाया गीत, इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है. जब जब हमें आपको कोई पसंद आ जाता है तो ऐसा तो होता ही है कि चारों तरफ उन्हीं के यादों में हम खोए रहते हैं. हमें कुछ करने में अच्छा नहीं लगता है उनके बिना. तो चलिए, फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को गीत पसंद आया होगा. और अब मैं चलूँगी गीत सुनाने से पहले आपके भेजे गए संदेश की तरफ दोस्तों. और संदेश आया है द्वाती की तरफ से. द्वाती ह्यान वनल मिसवाल पा कगाई से रोंतिया नंगपो इरे एलोम कदम कदम लो ही मिन द्वात लाओ ए क्लास पो का कल थे लाओ कन सार गदी ला कहो कलो हो ले दै अरोंती आवन जा लो वे ओ ngतिंगे ले लो दम लो ले ओ द्वाती लो दम पत पत रो ओ लो एन कोल छाला दम दो दे खलो ए लाओ स्वान अ जा महियान आरजेबीएल नमस्ते नमस्ते रोंतिया आपको भी नमस्ते जाम ओ Soan, Raja Vil Dar Engzat Ange Iron Live Don Ka Rantia Kasay Don Law Kasay Du Law Kahak Lito Eh Ihu Por Em Zam Zam Hau Law Tur O Rantia Kasam Don Law Hiti Hi Anime O Zam Kanui Ral Vekang Tizu Law Om Kho Mai Sang kung tia hian, RJ Mon VL I U G P A kan ni a, Voin zu jila zama kan thi mang, voin zu jila zama kan thi mang a, restaurant a kan zol don em ni, Kay po in ngurdua tanu kabum ve anga, अले तो चलिए नाम छीने. तो चलिए फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगेगा. और यस, आप सभी भी मेरे साथ हिंदी के खंड पे आरजे वील के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए हाजिर हो जाइए, ठीक है. और आज लोटोंग ड्राइवे कुला ओ सिग्नल कन नहीं छत है नान ओ नेटवर्क ते अच्छा थे नान लोटोंग ड्राइव मिलो लोटोंग ड्राइव पुई पुई फोट उला अधिक निमे दरोजाम. तो चलिए फिलहाल मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी. अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी लड़की बड़ी अनजानी है मेरी तरफ से. और यस, और चलिए फिलहाल बातें तो होती रहेगी, सुनते हैं ये अगला गीत मेरी तरफ से. दुआ तिलो दम फतेनान तियांग ओ चान जामते कुंगते ते इन सफाई खान. आप सभी मुझे सुन रहे हैं, आप मैं चाहती हूँ कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीते दोस्तों. तो चलिए सुनते हैं लड़की बड़ी अनजानी है मेरी तरफ से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम.

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभी जो हमने गीत सुना था, लड़की बड़ी अनजानी है, सोनू निगम नहीं कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत था दोस्तों, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ दोस्तों। हमारा समय पूरे 10:40 तक है दोस्तों। आप कहीं पर भी जाएंगे ना दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। लौफीम खुरउला, आप सभी सावधानी से आप जो भी करेंगे ना, अच्छे से करना, सावधानी से, ठीक है। फीम खुर तो खान इंथिल ती अप्यांग आ खान ओ इंथिल दिया प्यांग आखान और फिल्म खोर दे उखान लाओ डिजेल उला, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपका दिन बोरिंग दे हुआ हुनी मन का कम फल लो नी, ठीक है। हमारे साथ इस FM जो 100.7 के साथ आरजे वीएलए के साथ हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी का इंतजार रहता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर आपके संदेश की तरफ चलते हैं। महमूद हियान आज वीएल के पोक जुन कोंग नाय ओम अतम लुतुका कनवाम लो आ मिंदु अदवेरो ओ कलदु इशियात खा अरोंती आ ओ कन प्ले यांग चुआन पा एंग हियान आरजे आ ngai lo lut man cha lo ma ila ka ngai tha man che o van fel chin ta ko i o sharing chunga thil han khoi chu a she om lem lo khop mai ei chuan do ti hian van lal mi swal pa te mo pe khok sang i bun chiang mai ka sei dik te ro ti ya o tem chuan a ke arti chu sang deu but ka bu na mo छेतेन मासे अहिल्स का अलियन दामो चुआन मेरे दोस्त जा महियान आर जे बी एल इमो एफ बी लाइव तो जोंग जोंग आ चुआन कंगा ले बेर ले का थिर चाक बेर अनि ओमे तु हुन रंग चाक लुचु इन हेर छुआक थ्वाई थ्वाई से कवन टी सी एम यो बर लु तो गोल एग्जाम ग खोंग अंग जे मी मा जाम ना कलाया आ हाउ ए लाइफ दी वेल ही आ निन ओम शोम एज ए साल ओ हियन लाइफ लो मी रोन तिया लाइफ लो ए टिक टिक ना ओ टिक टिक ना ओ इ दार सोम पनि आकन लाइफ दोननी ओ सिग्नल ते ही हंचस हंच शाम से ओ दिस वन दार सोम पनि आ हिंदी सेगमेंट बी का खान कन लाइफ दोना ओ हुनते ने चोन मि लोमन पुयंगा मि लो थिरंगा कमेंट्स ते खा तम टॉक मै खा इन रन सोयंगा रेम रेम कन छिया रंगा कन ती ती ले आंगा कन नुई ले होर होरंगा कन नुई मेर ते का छथे स्या उई हा kazak log kanui changam don lawa anwa pokati lawa ya gechu ole to chaliye filhal agle geet ki taraf chalte hain fir wahi geet main sunana chahungi barish mein tum neha kakkar aur rohan preet ki awaaz mein gaya geet sunte hain chaliye aap sabhi ke naam

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के आवाज में गाया गीत, पता नहीं आजकल ये गीत मुझे इतना पसंद क्यों है। जाम मोइन दिबे मामुन तुलना चहल आही मोइ कति ये ठाकी नाम कति तो भाई आहा दम कति हा दम देव देव लाही मो ये ठाक नाम कति या। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी गीत पसंद आ रहा होगा। और चलिए एक बात, मतलब उस इंसान से हम कहना चाहते हैं कि जो प्यार करके निभाया नहीं, उसी इंसान के लिए ये एक लाइन कहना चाहेंगे कि प्यार में भले ही हार गए हम, ठीक है, प्यार में भले ही हार गए हम, लेकिन प्यार निभाने में मेरे जैसा मिले तो बताना, है ना दोस्तों। अच्छा तेरो और यहाँ पर एल बी रेंथे ह्यान आर जो वेल वो इन मनवामले इप्ले इप्ले नलसी निमिन खान कलाइफ डोन लो इतिसी आ प्ले ले तुर खा एफ एम सो ओइंगाइ थतु जंग जंग ता ल्याओ ल्याओ कन लाइफ लाओ मे दोन मनी ले चुआन के गे ते ह्यान इनुई रिश्यात इनुई री श्यान लुकावा रिमो ही ओम लो ओम लो अन्या कनाओ ए अनी मो तकमी ना मानी है मिन दिनुई थी ना आइन सुम थे लो लोम इस सेगमेंट आ ह्यान इवे इप्ले न इप्ले आई मा इन इहिम नुई री श्यान चाक आवांग इन के सु कलो कलो कलो तलान लु तम फा कलो तलत लु तम फा अनिया नुई जेरो ओ नुई तम ते ह्यान मिदंग आ लिम ना अपेचिनस अपेचिनसिया कुंगते आ केंगाइते नुई रेंग हिचु आहार वे थौ न्या ओ मासे ना मानिया मिन मिन चोक्लिम थे ए मा चान हे हि तोंगे ओ बीएल चोंगथु की तरफ से संदेश है बी एल चंग थू ह्यान आज छोटी छोटी खुशियों में ही जिंदगी का सच्चा मजा है। हाँ वाओ क्या खूब कहा आपने बी एल चंग थू यस और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे संदेश भेजने के लिए और हमें सुनने के लिए। और यस हम आगे बढ़ेंगे। यस छोटी छोटी खुशियों में ही जिंदगी का अच्छा मजा है सच्चा मजा है। मुस्कुराते रहो क्योंकि एक मुस्कान हजार गम मीठा देती है हजार गम मीठा देती है। वाओ क्या खूबसूरत लाइन कहा है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। यस इसी को तो कहते हैं जिंदगी, है ना। और माहून ह्यान आज वी एल हादम अलोम मासे कन मिपाते हौ ही इदुआ जोग देविन केशिया कदुआ थौ चेलोम दुआतु ओ नंगपोइ नै छत एम खा आर जे टेम सते ले मि तंग तंग ते पो खा। चुआन जामा मैसेज आया है दोबारा, मैं वो पढ़ लेती हूँ। आज वेल का दूथु साम एंग दिगे मोचु हिंदी सकमेन भी का छून लमा एफ बी आर लाइव वे थे से दी आ थुम ते यांग इन कलो थीर वे वो चीन हुंदु ओम ले हिम ओम हिम ओम चु दार सो पनी आ अथेंग दिग दोन ता का हैप्पी टॉप्स जाम का लाइफ लो ना का लाइफ लो रेंग ना छन का शिलंग चे इशे दू एम नकी ना का शिलंग चे ओ स्वाय मिन दिसु ओ अले तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले गीत की तरफ। मेरी तरफ से हसी बन गए माँ हुनी के लिए आप सभी के नाम। यस माँ हुनी का फरमाइश गीत तो नहीं है, उनका मन पसंदी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हंसी बन गई श्रेया घोषाल के आवाज़ में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, माम होनी का मनपसंदी गीत मेरी तरफ से आप सभी को ज़रूर पसंद आए होंगे दोस्तों। यस, अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और हमारे पास अब बचे हैं 10 मिनट, ठीक है। और इस 10 मिनट में ना दोस्तों हम ढेर सारी बातें करेंगे है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे साथ अच्छा लग रहा होगा, आप सभी को हिंदी के गीत पसंद भी आ रहे होंगे है ना दोस्तों, और आप सभी अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। आप कहीं पर भी रहेंगे दोस्तों, जहां पर भी जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से करिएगा अपना काम, ठीक है। और चलिए गीत में सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत ही प्यारा सा गीत, सुंदर सा गीत मेरी तरफ से। यस, चलिए सुनने सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को बहुत ही प्यार भरा गीत। मैं अगर कहूँ सितारों से, बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों। और माहुनी एलबी जामते की तरफ से संदेश पहुँचा है दोबारा, लेकिन चलिए ये गीत सुनते हैं पहले, फिर मैं आऊँगी आपके संदेश की तरफ, ठीक है।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मैं अगर सितारों से कहूँ आतिफ असलम की आवाज़ में गाया गीत आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों चलिए, हमारा समय भी खत्म होने वाला है। यहाँ पर तीन संदेश मैं पढ़ना चाहूंगी मामूनी तलबी रिंथली और मेरे दोस्त जामा की तरफ से। मामूनी हियान आजे वियल हसी बन गए अनल थोत आजे टेम्स इन मिन थोत लाओ अद्वाता चिंग आई रो मामून अद्वात वांग अद्वात ए मैं वांग से नहीं खाओ जो का मीते कंती दो कंती दो दा छिन चुआन ये कंट मंगा ए मैं मनी ती ती ना नी ओ ई ओ एम कमेल माकुम लुन इनी मिंती अ फ्रेंड्स फॉर एवर तुर नी खाओ kan mi pate hi dwat lak an ni lau an le lut tuk an le ti tu ka chiang alom ke pon mo ma mun al bi ren thai hian rjb al abi ka thil in shil oil o ei i life don boka ka phur to kher mai thleng wat wat se o in ban ngal hlom tak em o jil zama ka chan pa hian rjb al i mo mun pu ti ni ram lot kha dwat duat tu anei cha raps rjr ken adwa thei raps mole rjr tem sanen ero uile kel ang lau thung haron ti a ओले तो चलिए फिलहाल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जाने का समय आ चुका है। अगले खंड पर आपके साथ आरजे साइलो फिलते हाजिर होगी और मिलते हैं लाइव शो प्रोग्राम पर। दोस्तों इंतजार रहेगा आप सभी प्यारे दोस्तों का। तो ये आखिरी गीत आरजे विली की तरफ से मेरी यस आरजे विली की तरफ से आप सभी के नाम। कल हो ना हो सोनू निगम की आवाज में गाए गीत। तो चलिए आप सभी अच्छे से दिन समय बिताते रहिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं 12 बजे।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा हिंदी के खंड पे। और आप सभी सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी आइजोल FM 100.7। और आपके साथ फिर एक बार जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी के खंड पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि FB के हमारे पेज ऑल इंडिया रेडियो पर हम अभी लाइव शो कर रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप सभी की मुलाकात होगी FM हमारे पेज ऑल इंडिया रेडियो आइजोल FB के पेज पर दोस्तों। तो आइए, आप सभी का इंतजार रहेगा, आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों का भी दोस्तों। और चलिए, इस खंड का सबसे पहला गीत मैं

सुनाना चाहूंगी दिल की आंकरे। यस, बहुत ही खूबसूरत सा गीत दिल की आंकरे मेरी तरफ से। इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत गीत इस खंड का. सबसे पहला गीत दिल क्या करे, उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए. इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों. और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ. और हमारे FB लाइव शो लमा खान रिक्वेस्ट सॉन्ग ओमा, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी. तुमसे अच्छा कौन है. यस तो चलिए.

ये सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है। यस, आपके सिवा और कौन अच्छा है इस दुनिया में, है ना। खुद से प्यार कीजिए, हमेशा खुश रहिए, है कि नहीं। तो चलिए सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। और व्हाट्सएप लमाते पोखा मैसेज पाए देखा लो रे वे खेर लो ओला। तो चलिए सुनते हैं तुमसे अच्छा कौन है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे पेश किए गए गीत तुमसे अच्छा कौन है आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे, है ना। यस, तो माहमुनी खान वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दी फिल्म मी आई मीन लव दी कारण थांगा मासे माहमुन लोग ओ जोन अंगाई लोग कल मुरम चांग लवा, लेकिन तब तक के लिए हम बहुत ही प्यारा सा गीत सुनेंगे बारिश में तुम। ये जो गीत है ना दोस्तों, एक बहुत ही प्यार भरा गीत रोहन प्रीत और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए मैं पेश करना चाहूंगी। और यस, तो चलिए आप सभी मेरे साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, आप सभी का इंतजार है FB के हमारे लाइव शो प्रोग्राम पर। और इसके साथ साथ यहाँ मैसेज की तरफ भी मैं आप सभी का इंतजार कर रही हूँ। LB रेंटे ही आन मिस कथा लाख लेंग इन चेदे उते कारो थोन बेते चे RJVL इन लाइफ टू कलो मु ए ओ कलो मु ए ओ इ ओ ले इन विरी मोई तका लो ngai thareng che or RM Chuan Stumger film la मौसम प्यार का बादल तीखा इतान लिया लिया और रंटिया ओले ओले ना ओम चुआन अगर हमारे प्लेलिस्ट में होंगे तो हम जरूर सुनेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के पास, बारिश में तुम। वैसे भी आजकल बारिश का मौसम है, बारिश में ये गीत सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये गीत जरूर पसंद आएगा। तो ये गीत चलिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए और यस FB के हमारे दोस्तों दर्शकों के लिए भी।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बारिश में तुम गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे. और यहाँ पर इलाल दिन पुया फलकोन ने नचंग इन मैसेज कर दूंगा अनि हियन आरजे ए प्ले ले तुर खा नंग मा ता ले लौंगाई था वे जोंग जोंग ता ले आरजे जो जोंग ता ले कछियान ते जोंग कछियान ते वेंग शंग शंग अमी ते तान अरोन ते इलाल दिन पुई हियन इलाल दिन पुई एफ बी आ पेज ने वे एम FB akan ke live me kamu amin lo join bela. Oh, ale to bahut bahut shukriya le din puya aapke sandesh ke liye. To chaliye mere pyare pyare dosto, agle geet ki taraf chalte hain. Tujhko RJ Singh ki awaaz mein gaya geet meri taraf se is khand ka agla geet aap sabhi ke naam aur mere pyare pyare shrotao ke liye bhi आरजे वीर की तरफ से. तो चलिए, और स्पेशली यस लल दिन पुया फलकोन के लिए और उनके दोस्तों के लिए.

वेल दोस्त, वो मुझे उम्मीद है आप सभी को तुझको गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया गीत छाया है जो दिल पे क्या नशा। बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। ये गीत तो शायद आप जानते ही होंगे, दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया है और इस गीत में ना ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है। और यह सबसे मतलब पूरे गीतों में से ये गीत मुझे सबसे पसंद है दोस्तों। तो आइए चलिए, मिंग मोइते की तरफ से भी संदेश आया है। मिंग मोइते ह्यान गुड वानल गुड आफ्टरनून रोंतिया। ओ मिंग मोइते एफ बी लमा देखा मिला उठिर वे एम। क्या आप मुझे एफ बी पर ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए और एफ बी के हमारे पेज पर भी अपने कमेंट्स ड्रॉप कीजिएगा मिंग मोइते। ओ यस, तो चलिए मिंग मोइते को भी अ वेरी गुड आफ्टरनून। और यस, तो चलिए सुनते हैं छाया है जो दिल पे इस खंड का अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को शान और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में गाया गीत छाया है जो दिल पे क्या नशा, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। यस, और चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी गूंजी सी है, साधना सरगम और उदित नारायण जी के आवाज में गाया गीत दोस्तों। यस, और मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी कि आप सभी मेरे साथ FB के लाइव शो प्रोग्राम पर साथ जुड़े हैं और अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं दोस्तों। और आप अभी तक मेरे साथ FB के हमारे लाइव शो पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास केवल 15 मिनट्स रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा समय खत्म होने वाला है और आप ढेर सारे लाइक्स कमेंट्स भेजिए दोस्तों। ठीक है, RJVLE आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही है, तो चलिए आप सभी का इंतजार करते रहेंगे। तो आइए सुनते हैं इस खंड का अगला गीत मेरी तरफ से, आओ ना आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ साधना सरगम और उदित नारायण जी की आवाज में गाया गीत आप सभी को पसंद आ रहे होंगे दोस्तों. और यस, जी हाँ दोस्तों, आप सभी का समय दिन अच्छे से बीत रहा होगा और आप सभी बहुत ही अच्छे से अपने अपने काम कर रहे होंगे दोस्तों. और हमें सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा. हम आपका साथ देंगे पूरे 3 बजे तक दोस्तों. आप जब भी आपको मौका मिलेगा दोस्तों, हमें सुनने के लिए आप सुनिएगा जरूर और हमें संदेश भी जरूर भेजना, ठीक है? यस, क्योंकि आपका संदेश हमें इंतजार रहता है और हमें अच्छा लगता है आप सभी से बातें करना दोस्तों. और जैसे कि मैंने कहा था कि आप हमेशा खुश रहें जिंदगी में, ढेर सारी तरक्की करें दोस्तों, ठीक है? अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आप उदास मत होना, ठीक है? जिंदगी, ईश्वर आपका साथ हमेशा देंगे और देते रहते हैं दोस्तों. कभी भी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, ठीक है? और ये FM 100.7 भी हमेशा आपका साथ देती है और देती रहेगी दोस्तों. अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं और हमारे साथ हंसी मजाक प्यार भरी बातें भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो इंतजार रहेगा आप सभी का. तो आइए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारा समय भी खत्म होने वाला है और चलिए सुनते हैं अगला गीत. इज दिस लव मेरी तरफ से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए अजय वीरे की तरफ से.

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ इज दिस लव गीत सुनकर मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में गाए गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। और हमारा समय भी खत्म होने वाला है और आप सभी से अलविदा कहने का समय आ चुका है और आखिरी गीत भी सुनाने का समय आ चुका है दोस्तों। और यस, जामा जामन एफ बी लमा खान लाइफ लाइफ शो प्रोग्राम आ खान सुकून ला खा रोन थांगा चुवांगिन सुकून ला मंगिन करीन बाय बाय दोनानी। ओ चौहान, उससे पहले यहाँ पर मोरिस की तरफ से संदेश आया है। मोरिस कियान, गुड आफ्टरनून मिस आरजे इप्ले लिस्ते अलुंग लेन था वोंग वोंगे फूर खोथियांग नुआया आ इन में रेम ले मई हन होई वेल इला तलांग तीन बोम तू रौ मई ले चियाओ छुम अन कियाम मे उचुआन खो होई अनुआ मे दिख चातरो फुर खोथियांग हिचु अनुआम मुग नुआमनी अनुआमनी तरो नेक्स्ट जो ओय एफ एम ngai tu te tan kalhan vek boke aron ti ani Maurice Elar khyang te hian lomom thin le mai Maurice hun nuam da win lo mang zia ro o chuan usoma ron langa RJVL e o shiat anuam chi ne ila ron play le tur hi itan le tun tun tuna kapur me pu lk ya pu david le pu rem ki mate karon than sake aron tia e usom tuang de win na ka lo thokla o chuan motori khalin kashia a film kur de win lo khala chuan tuang de win i i pur te kha an tumra mi lo thlen pui don nia o chuan lim de win lo omro o chuan message i message hi kan long hak lel ve chin nia o chuan तो चलिए फिलहाल दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अलविदा कहना चाहूंगी आप सभी को आरजेवीएल की तरफ से ये आखिरी गीत, और आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा मेरा साथ देने के लिए, मुझे सुनने के लिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोबारा 1:50 पर हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंड पर। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, और आरजेवीएल की तरफ से ये सुकून गीत आप सभी के नाम।

आप सभी ने एंजॉय किया होगा और यस मैंने तो हाँ मैंने भी एंजॉय किया है, लेकिन मैं थोड़ी सी नर्वस थी दोस्तों, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अब मैं नर्वस नहीं होंगी, आपसे अच्छे से बातें करूंगी ढेर सारी बातें। तो हमारा ये जो आज का आखिरी खंड है दोस्तों, 2:05 तक का खंड है, तो चलिए मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए हिंदी के खंड पे, आप सभी की दोस्त राजे वियली। तो इस खंड का सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को, दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने। यस, प्यार का कौन मतलब दीवाना नहीं होता है, हम सब होते हैं, है ना दोस्तों। जब हमें प्यार होता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए आइए आप प्यार में डूब जाइए हमारे साथ मेरी तरफ से ये गीत आप सभी के नाम।

0: Arun, tum theek kehte the. This place is very romantic.
1: Well, dosto, umeed hai aap sabhi ko दीवाने हम प्यार के हैं दीवाने बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों. तो आइए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं और अगले गीत सुनाने से पहले दोस्तों आपके भेजे गए संदेश की तरफ मैं चलना चाहूंगी. और दोस्तों हमारा समय केवल 2:05 तक का ही है दोस्तों और हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं पास है हमारे पास 9 मिनट है हमारे पास दोस्तों माफ कीजिएगा. और चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत यस तन्हाई तन्हाई गीत है और यहाँ पर मेरे दोस्त अजामा और My forever friend की तरफ से संदेश आया है कि चांद पाही तुमो कि दुंगोई गोई तानी चांद ओ तुम्हीं मां चांद एल्बी रेंट लाई हियान कि थलाग ने थाप आज भी एल ताई लाम हुन मन नुआम ले नेक्स्ट का इतान ओ रंतिया ओले कलोम लुटु के ओ एफबी आंदे मिला उठीरा कलोम तक से तनी Chuan, Chuan tua tihan, vanal miswal pa, bai, yaron tia. Ole nang po bai bai le, oh, lawin enkol cha la, law dam vong vong la. Oh, Chuan zama hiyan. Zama hiyan. Oh, VL, RJVL, vu inatani segment top carpui tour. In karon in report le eh. Iblay le tu zong zong ka ngay sa tu titan le itan o tuang teki ni hodon niya kanin mo kanton le ma lao zong kwa nun ompui in wal him tisila he rimoy run FM zao oya kwa nu malsom na tam tang dongin trisil na chanin him dam takin kanin kanin ton le dial dial thay kabay say eh man chachin tak em iho ko nga film ko le ang zi o derek may zam nang po lao film ko le rao o titsuan aap sabhi pyare dosto ko bhi may kehna chahungi ki aap sabhi bhi apna khyal rakhiye ga jab tak hum nahi milenge aapko apna khyal rakhna hai आपको खुश रहना है ठीक है यस और इस FM ZO 100.7 के साथ हमेशा जुड़िए आपका दिन ना बहुत अच्छा जाएगा ठीक है. तो आइए सुनते हैं तन्हाई तन्हाई इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज मेरे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर आरजे वीले के साथ अपने भेजे गए संदेशों को सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा। यस, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा हमेशा, ठीक है। और आपसे तो बहुत ढेर सारी बातें तो करनी है लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है आपसे बातें करना दोस्तों, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे कि आपसे दोबारा इस खंड में जल्दी मुलाकात होगी। इस खंड में नहीं दोस्तों, इस FM जो 100.7 पर दोस्तों, ठीक है। और आज जिन्होंने भी मेरा साथ दिया FB के हमारे लाइव शो पर भी साथ दिए, उन सभी दोस्तों को मैं दिल से आरजे वियली आपको शुक्रिया अदा कहती है दोस्तों। यस, और इसी तरह अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। और यस, हम इतने खुश हो जाते हैं कि हमारा पूरा समय हम खुशियों से भर जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह आपका दिन भी, समय भी खुशियों से भरता रहे। आप जो भी काम करेंगे, जो जहां कहीं पर भी जाएंगे दोस्तों, आप बस अपना ख्याल रखिएगा, बस अच्छे काम कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, दूसरों की बुराई मत कीजिए दोस्तों। एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आप अच्छा इंसान बनेंगे ना तो आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। तो ये आखिरी गीत तू जो मिला के की आवाज़ में गाए गीत से मैं विदा लेना चाहूँगी क्योंकि ये गीत मेरे दोस्त, मेरे लवली दोस्त उठीपिया का मनपसंदी गीत है, क्योंकि मैं उनके लिए ये डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ही बिजी होकर भी मेरे लाइफ शो को उन्होंने देखा, उन्होंने ज्वाइन किया। तो चलिए ये आखिरी गीत उनके लिए और आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों, आरजे वियली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से रेशवाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परम्परा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीर

0: तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आज बंगाल की जनता ने मतदान के माध्यम से स्थिति बदल दी है। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। और मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister also urged devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These include maintaining cleanliness throughout the yatra, strictly following all safety and administrative guidelines, supporting the local economy by spending at least 10% of their travel expenses on local products under the Vocal for Local initiative, gifting a sapling to a sibling on Raksha Bandhan to promote the Ek Ped Maa Ke Naam campaign, and carrying the spirit of nation first by performing their duties with honesty and contributing to the vision of a Vikasit Bharat. Meanwhile, the annual Sri Amarnath Ji Yatra, which began officially this morning, is proceeding smoothly from both Nunwa and Pahalgam and Baltal routes. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The Finance Minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Vikasit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. Highlighting the growing economic ties, Ms. Sitharaman said bilateral trade between the two countries has doubled over the past decade. She also appreciated the presence of around 1,000 French companies operating in India. A 2-day orientation program for the newly elected members of the West Bengal Legislature

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आरजे ज़ुआल भाई। ओके दोस्तों, आपका दिन कैसा बीता आज मैं जरूर जानना चाहूंगी, एंड उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी तरह से बीता होगा। एंड आपके जिंदगी में कोई परिस्थितियां भी होंगी, मुश्किलें भी होंगी। उम्मीद करती हूँ एफएम 100.7 को सुनकर आपकी आपका मूड ऑन हो जाए और आपका पूरा वक्त बहुत ही अच्छी तरह से बीत जाए, और आपके प्यार भरे एसएमएस का हमें इंतजार रहेगा। हिलाई हिया नीन एसएमएस बिन रोनिन लार्सा तक तक ते कई नोमले तो इन करिंगा विकुंग ते ते जे ललजा मते मो ए अंतम ले दोन ती ही कश्यानी सवाई तो ना पोहियानी मिन आई थरु किया उ दिखा कश्या अनरोन लंग फत दोन पोहियानी श्याद ना कनेया स्टूडियो रोन पन पा खान मिथ्ला इन लंग चोई चोया इन एसएमएस ngai thak nuam tak tak chhiar nuam tak tak te kha mithla khan ron sam pei mop mop mei ni chuwangin ron in thashung lawla in sms te kha ron ton chur chur ro om। चलिए दोस्तों, खंड की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही प्यारे गीत के साथ। मुझे नहीं पता आपने कभी ये गाना सुना होगा कि नहीं। ये है किक फिल्म से, जिसमें हमारी जैकलिन फर्नांडिस एंड सलमान खान जी ने किरदार निभाया था। एंड ये इन फिल्मों के जो गाने हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए। इस खंड की शुरुआत हम करते हैं इस गाने के साथ, तू ही तू।

बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, उम्मीद है कि दोस्तों आपको जरूर पसंद आया होगा। एंड ओ लेरो लंग तलोर तलोर में इन खतलियां ती ही कश्यालो मो आमा सबेरिन में मोई ते हियां सो बोई नमस्ते ड्यूटी नुआ मरन त्या मंग बोई ते कदिंग का ड्यूटी नुआ मंगाल दोन तिखा कनशिल मंगाल तेंग से के फाला हियां कनी जोल बोई रोन निल्तिले हाल टॉप तानी कलो थोन लो टॉप दोन से मोनले kalau tuan laut top don se mon le min she chadu lo eh me min ngai lo si teron te ke va le hi nang ma zo hina mi te i she chadu lo mo SMS te hi ron ton ro ti ngor ngor hi ngai chu vang tu ngi indu zo mo ti khana chiang mai in ka sha vi kung te a je zo boy hu ha i ron duty hian ninga mo ka shat na enge enge monile min shi thadu an sorry sorry sorry sorry sorry oh rj zol bai hu iron duty hian enge mokashya thin ni kalau lai bi em every one zel duty ni mamran ti a vi kong te lo lai su i lai chuan enge ni pe chu kan lai che ngal kha ni top me do na mo chuan chuan ka duty ni wan don ti hi ka chiang ngal ni oh voin tun tlai tun tlai vo in tlai kan ting chu tun dar kar hun atang hian in ka chiang ngala ni chu o ale to na chuan in next time jo sune ja re he to na sms mi ron thon tu te o special lut tuk mi pathum tan khan in kan ti phatang hela hi lo du ve tu zong zong ti tan pon han ti la tro o aswal om la ve ti na big takin tu na sms kan share chwa tak te पुआल खान इन हनी बॉक्स ओ तो चलिए ये एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग इस वक्त जिन्होंने मुझे एसएमएस भेजा है आपके लिए स्पेशली मैं डेडिकेट करना चाहूंगी एंड ये है किस्मत कनेक्शन फिल्म से और गीत के बोले हर घड़ी अब ख्यालों में बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा इन लॉन्ग लिया मंगल रोई रोई ज्ञान इन कर रिंग का बेस सही बोकनी सो तो चलिए हम सुनते हैं हर घड़ी अब ख्यालों में किस्मत कनेक्शन फिल्म से हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग

तो दोस्तों आपके एसएमएस की ओर बढ़ते हैं। मामूनी रमलो थियानिन अर्जे जोबे वर्तमान मिस अनरंते वर्तमान मिस लाई तक्का कश थियाम तलोता ने मामूनी मारो सुसियाल कती ओ मिनरन मिनरन नमस्ते रानी मोई कती छोट मामूनी एंगे इचन दो वर्ल्ड कप ओ वर्ल्ड कप लाई ते दिया इचन कश साख लेनी एंड मोरी साइलो यान आर जेस वाल बोई कंगाई था से ने कंगाई तो चेरन तिया मिंग मोई नेक्स्ट का मिंग मोई ते तान ते मोरी साइलो ही ngai ओम ngoi ngoi tun hun tun dar kara hi ana sanju ire re lu tu o e zanin chu a to thleng kanin ngai thla tura nga yang chuanin jela za ma e kai kai kai he hi chu khat liam tha don a to pe ra sms ka chhiar hial don mun negati amai ro chu kan khong a yang aron ngal le meimo hei ron thui le khop mea hello rj zwal boy namaste segment on my signature music bol ka thin hi kai ai sok zel theinia enga tinge ni fm zoi rimoi ru na nang nen hyang kan in hal em em e bol chon na la ka ka gai thak pe lo si ron ti chan hoi ham soi tur tam du tok phots me te gen poni se duty nuam pho zan in suka zalen du tok in soi satur chein hun ka nei next song i tan sia big riaw in kan thlan sak nat na pangi tun trum suran tia oi jail za mi chu aril ru aril ru chung ril ron pu enge ron por chuanan hianin hei ron hel kwal thui thei lu tukhimo cute theinya enge veinia veina puanti thuin hem ki korte thuin hem le tu em na tho pa hianin mino ngai thamel mel thina zamte hianin chuwan chan zamte hi chu ke zu ka ka ho phal lo shim shim top me ni mo ma hi chan vikung te hianin naglagana basurat larke ke pala aur sexy larki ma muni ramlot ke liye ay vikung te na shyang bermei chu ni hitro aron tofu te maybe kung te ani tak takang em miron zia hi an mani han an du lo te me ngem te kan ti ver te ang ole ban li mom chi tak te khan in mi lo duty pitcher zer zer ru okay po he la in tan kalo om ring don ti kha kan han tui ni le sham du ni chu ओके आगे बढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त गाने के साथ हम अपने इस खंड को जारी रखते हैं और इस गाने के बोल है तेरे संग यारा और फिल्म है रस्तम जिसमें अक्षय कुमार एंड इलियाना डी क्रूज ने एक किरदार निभाया था। ये गाना आप सबके लिए तो नहीं समझ में रन थोन तो मिफेल लु तो क्यूट लु तो मेल चाहो तान खान इनका नंगे ओ तेरे संग यारा

चलिए आपके मैसेज की ओर बढ़ते हैं। एलआर त्रिपुरा से लिखते हैं, प्ले मोई मेर पोचा ए रंती आ एफएम जोय टंग पोया गनि मुहा गनि मुथे गनि मुतलांग थे फे कनि आंग तरो कन ओ रसोई कॉन्फी रे रसोई कॉन्फी थे यंग रिंग बुक्स या। एंड हितेंद्र जी, गुड इवनिंग, आप हमारे साथ गए रहिए। एंड हमने सुना है कि आप तो हमारी ये जो आवाज है आप तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन आपके एसएमएस जो है हम तक जरूर पहुंचा है। आप हमारे साथ लगे रहिए और हमें एसएमएस भेजते रहिएगा। मोए दुर्टलांग से लिखते हैं, हेलो आरजे 640 छूंग पो अरे दो खप माई वही मीम रो ए दोन ए दोन अंग मियांग रो देवान तुई दोन एम वही मीम गेंगे जो नाइस वही मीम सीजन बुगत्रो वही मीम कंटे दे उरेंग मई नहीं। आप हमारे साथ लगे रहिएगा दोस्तों। एंड नेक्स्ट हम जो सुनने जा रहे हैं और एस एम एस में रोन थोन तो तेतान खानिन सियालू तो किंग गंगाई था दोन नहीं। नेक्स्ट हम सुनेंगे प्रीति और पिंकी की आवाज में दिल विल प्यार व्यार।

आज का इस खंड के लिए सबसे आखिरी मैसेज हम पढ़ेंगे जानी जू वी कुंग ते हियानी नुंगुरी सालावर अन लंग थे या नुआम खोप में तियानिया इंगुरी सालावर अन लंगा अलो मोम तक सितनी एस एम एस कारण थोन जे रु ओ इन रे वंग वंग हिस्सा खुआ ते हिन हर छी नमो कौलम लम ते ही ओल्ले में छी हितेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय सामने पड़ा है। आप हमारे साथ लगे रहिए, आपने खाना खा लिया कि नहीं। वेल, इस खंड के लिए सबसे आखिरी गीत फिर से सुनने का वक्त आ गया है। वक्त ऐसे बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस खंड के सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे लतीफ असलाम जी के ही आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना। एंड इस खंड के लिए मैं आप सबसे अलविदा लूंगी और फिर मैं वापस लौटने वाली हूँ 9:02 में दार क्वाल मिनी दो राकुरन के लिए दो ननी सुवांग सुवान मिलोंगा इत सर सरोला वेजोंग ते इंट्रन जोंग ते कसई चंखा निन से थ्याम हा मे न्या अंग छु ओ खांग ते खा इन शेरिला ओम खखा दार क्वाल मिनी नि राकुरन के लिए दो ननी सुवान तुना कन सेगमेंट ताना कन ननुंग बेरही एसएमएस मिरोन थोन तु सोंग सोंग ते तान सोनी नो मेगा हिरोन लंगशा मावे chia le sha mang FM zo hian tia nga nga ran ti vel dua ta ni play tur khai duty pui te nen in tan ran tia omega kan lom lu tu ko iming hi sial kan ti ke ni po in dam reng la min lo ngai tha reng ro चले इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनते हैं। ये होगा हमारे प्रीति एंड पिंकी की आवाज में दिल दिया चोरी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7, आपके साथ है आरजे एज़वल बोई।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी आरजे ज्वाल फिर से वापस लौटी है और ये खंड जो है हमारा ठीक 9:30 बजे तक चलने वाला है, इसलिए आप अपने प्यार भरे एसएमएस हम पर बरसाना शुरू कर दीजिएगा। ज्यादा वक्त नहीं है एंड उम्मीद करती हूँ आपकी आंखें खुली होंगी, अभी तक सोए नहीं होंगे क्योंकि रिमझिम बरसात हो रही है बाहर। एंड यस, ऑफ कोर्स सोने का बहुत ही मन कर रहा है इस वक्त मुझे भी, लेकिन उम्मीद है आप मेरे साथ रहेंगे। एंड यस जितेंद्र जी, आपका एसएमएस मुझे मिला, बहुत बहुत खुशी हुई और उम्मीद करती हूँ आप ठीक है, सही सलामत है। एंड दोस्तों, आप कोई भी गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो दिल खोल कर रिक्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। डार कॉलेज सन वे थिंग इज वो इंतान कन हु नु नु के मा सेगमेंट भी का सन कन मंग में कनी आ इंगे मोहला दु रिक्वेस्ट दु ते कनम खान लो इंगे रन मिनन रिक्वेस्ट रो ओ इंटर शुंग लविन एसएमएस ते कारण टोन जुंग जुंगला। तो चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यारे गीत के साथ। और जैसे कि आप तो जानते हैं कि मैं पुराने गानों की फैंस हूँ क्योंकि मुझे पुराने गाने बहुत बहुत पसंद हैं। तो इस खंड को एक बड़े ही मजेदार और पुराने गीत के साथ किशोर कुमार के आवाज में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, पल पल दिल के पास। अगर आपको आप इस गाने को जानते हैं तो इसी इस गाने के साथ आप भी झिलमिलाइएगा। चलिए सुनते हैं हमारे किशोर दा किशोर के कुमार के आवाज में, पल पल दिल के पास।

चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ आया है। ओमेगा सांगते ख्यानिन तर्जिन खाई थाईला आरजे छुच्यांग ते रोन त्या ओ गम ना हनगाई थर्च्यांग दोन तक ए ममिका सांगते लाही गन गाई थदोन ने तर्जिन गे मे ख ओ इलाउ जाय पुई वे ते पो खाई एंग ओ ओमेगा तर्जिन लाही छु आ चुल थैलो नि द्रो एन रेल दिन पुए फल को न टंग ह्यान आरजे प्ले ले तुर खा नंगमा तान ले लोंगाई थबे जोंग जोंग तान ले आरजे ते तान ग छ्यान ति बेंग शंग शंग मी ते तान रोंती आ दिन पुया वन लो मोम छिन नंग पो मि लोंगाई थाक पुई चर सर ला चान ओमेगा सांग ते अंतर जन ला थान ही इतान खान करोन लान वे हाल नि ओ स्वान स्वान स्वान ता यानी हितेंद्र जी ने लिखा है। हेलो आरजे नमस्कार हाउ आर यू रेन फॉर इन तीन मनी चुन रंजिया का नहीं है स्पेशली यू एंड ऑल आरजेस एंड ऑल स्टाफ मेंबर्स ऑफ आकाशवाणी आइजो स्टेशन माय फ्रेंड्स आर मिनाल रोमेश अमल बीमार रेक वेलिक नारायण शिवा दुर्गेश विक्रम स्वरजीत भाईकोन अविनाश अंकित महाराज प्रेमजीत हरामणि देबाशीष अंजोली जयंता। हितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही प्यारा SMS है। वेल हमारे यहाँ पर तो बहुत ढेर बारिश हो रही है एंड उम्मीद करती हूँ आप अपने बारिश के मौसम में बिल्कुल सही सलामत है। ज्यादा बाहर मत जाइएगा, FM जॉय के साथ ही रहिए। एंड यस उम्मीद करते हैं आपके ये जो सारे दोस्त जिनके नाम आपने यहाँ फरमाया है वो भी इस वक्त हमें सुन ही रहे होंगे। एंड नेक्स्ट गाना तर्जन का फिल्म का एक गाना रिक्वेस्ट किया गया है ओमेगा सांग की ओर से, ये मैं आपके लिए भी डेडिकेट करती हूँ। ठीक है तो चलिए ओमेगा सांगते ना अहल थानदू तक माई तर्जन ने मे खा कनगाई थदो ननी ओ ले लंगाई थावला ओमेगा तांते स्वानिन है तादिन पुए तेले हितेंद्र दास तितान खान स्पेशल तो खान इन करोन खान सकते हो ओ मुंदविन लंगाई थदो निया।

दोस्तों, नेक्स्ट हम सुनेंगे तेरी चुनरिया। ये जो गाना है हितेंद्र जी ने रिक्वेस्ट किया था, ये हम सुनेंगे। हितेंद्र जी, आपका ये गाना हमारे साथ लगे रहिए। जॉन वी कुंग तेख्यान्यार जेस वाइल बॉय। हम मिलने से पहले तुम कहाँ थी? मैं आप पता नहीं मैं कहाँ थी, लेकिन जो भी है, हम मिले तो सेहत, हम मिले तो है ना। तेरो कथिल सोखा ओम जैशल एवेक थवांग भी कुंग तेजो Angel Zama Hyani, RJ Zolboy segment topic a carpui, RJ Zolboy segment topic a carpui dung em, oh, ga kong ai, me akan lan velish, ka kalang velish, amun yang tzu, ngay zwan te Zolboy tu, zog next song itan, ha topa in kalau. Alang shram ni katwang takin hong ang tseron ti a jail za ma min ngal me win na twang taka ho tu ra min han du sak chu ka lom le mai pathian za ra twang tak te puin ko ho nge ka bisi o chani nei a thok rim khop me a fak om tak zet kan ti ke utyang chan bil chung thu hian in har mushkil ke baad asani aati hai ron ta di khop me har satna har satna ka ramal somna lo thing china har satna pyala ma hian in har satna patlang to nu a chuan in tiro engkim me hi nun hi lo ol sama zirtina chatak te hi lo ni thina ni and Anthony Raltisya king hianin RJ play nal hlom ve mani in ring de win kalo ngai thangor ngar ni anal de de khaple zel te ta ban nuam tak em Anthony min lo ngai thal sar sar o so next I hianin Hitender das ina alathan he hi kan ngai thanga teri chinariya dilli gayi ye Hitender ji ne request bheja tha yes hum ye zarur sunenge ye rha aapke liye santuna sms concert swatak song song titan khan karan lan boke Come.

तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लूंगी एंड आपके सादगी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एंड और एस एम एस नुनुंग बेरगन हंसा ले लो कंगा मोए दुर्ट लांग चंगियन वासुर सु हो तो मासे अर्जु अर्जे तो तक नंग चलो ला हो लो ला रंते हुन भी हुन हियान इन मी ही अला दंग वे छीन बुक्सी है तो हुन मिल हियान कन कल वे जे लिंगाई छीन मे बुक्सी आ सो वन सन है सेगमेंट अदाना कन नुनुंग बेरवोइन तान हिंदी बी का छानी ने लो थिंगता एस एम एस मिरन थन तो zong zong te miron kom tu zong zong chunga lom thuk so ya chan kan hun hi top thing ami nong ai thak pi se tur khan in e garon som bok cheuni on dam takin kanin tong le chau donya aap sun rahe hain akashvani fm zo 100.7 aapke saath hai rj iswal wohi aap sabhi ko shubh ratri good night mang travek ule.